एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंसा

0: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजिकै जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: ठाउँ। 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

नमस्कार नमस्कार नमस्कार ने हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हूं साथ में सांगीतिक अभिवादन टक्राउं कार्यक्रम गांबसिका भाका को इस सुंदर चौधारी दिवाकालीन समय कार्यक्रम गांबसिका भाका को पर्खाई में प्रतीक्षा में रहने भएका तमाम तमाम लोकगीत पारखी संगे रेडियो पारखी मन को पर्खाई को घड़ी मेटौन का लगी सदैक अवसर में जस्ते आज अपनी घड़ी दिवसों को एक बजे आई सकता हमी रेडियो सेट समक्ष उपस्थित भई सकता छ को बसाई में यहां के साथ में उपस्थित भई सकती छु आरती कार्यक्रम गांबसिका भाका यहां स्यांग्दे जिला को पहला आवाज सामुदायिक रेडियो आदिखोला एफएम 105.4 मेगाहर्ज इंटरनेट अनलाइन मार्फत www.radioadikhola.org लगन करें साथ ही हामीलाई हाम्रो पात्र एक साथ सुन्दै आइरहनु भएको छ। दिवाकालीन समय में प्रस्तुत हुने कार्यक्रम गांबसिका भाका साता को 6 दिन अर्थात शनिवार बाहेक अन्य दिन फेनवार फेन बसाएको साथमा विभिन्न विशुद्ध नेपाली लोकगीत भाकाहरू लिएर कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्दछौं। आज हामी कार्यक्रम गांबसिका भाकाको अन्तिम दोस्रो श्रृंखला बिहिबारीय श्रृंखलाको यस सुन्दर व्यवसायमा छौं। बिहिबारीय व्यवसायमा रहेर हामी तपाईहरू समक्ष नयाँ पुराना लोकगीत भाकाहरूलाई कार्यक्रममा स्थान दिने जमर्कमा जुटिसकेका छौं। यहाँहरूका व्यस्ततामा फुर्सदको समयमा जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेर पनि हामी सँगै रहनु हुनेछ यो विश्वास राख्दै यति बेलाको क्रममा हामी सुमधुर खालको भाकालाई जोड्छौं। सोही भाका सँगै हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। यहाँहरू भने हामी सँगै रहनुहोला।

एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा

0: सुनत नजे छ
1: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग आठ पेट्रोल पंप को नजिक जैसी पंद्रह जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: नमस्ते महोत्सवर के अपने गायक तिलक बमल्ला तपाई यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ चांगर जिल्लाको पहिलो आवाज आदिखोलाको स्पन्दन सामुदायिक रेडियो आदिखोला 105.4।

0: रेडियो आधी खुला 105.4
1: सुनिस न अहिले हाम्रो गर्नेमा 10 बजेको छ
2: इस समय को साथ में जितू सुनचादी पसल वालिंग 8 पेट्रोल पंप को नजिक जैसी 15 जाने बाटो तर्फ विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
1: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।